0: सिखी दी ए निशानी। शब्द गुरु रामदास जी, व्याख्या जगदीप सिंह, चित्रकार प्रदीप सिंह।
1: सिमर सिंह, कृपा कौर, उठो उठो, की थानू वधिया नींद आई?
2: अखीरली चीज जेड़ी मैनू याद है, मम्मी जी ने करो बेनती गाना शुरू ही किता सी ते मैनू नींद आ गई।
3: अजीत वीर जी, मैनू बड़ा चंगा लगता है जदो तुसी मैनू जगांदे हो।
1: आओ वेखिए, पहला कौन स्नान करके पाठ करन ली तैयार हुंदा है?
2: मैं जित जावांगा।
3: मम्मी जी, की मैं बबल पाठ ले सकती हां?
1: आओ पहला सिमरन करिए, फिर कृपा कौर तुसी आज जपजी साहिब करो, मैं जाप साहिब करांगा, सिमर सिंह तुवे प्रसाद सवाइये करेंगे।
2: मैनू बहुत भूख लगी है, आओ छेती छेती पाठ करिए ताकि मैं नाश्ता कर सका।
3: कि मैं अरदास भी कर सकती हूँ?
1: आओ अनंत साहिब करिए,
2: मैं उच्ची उच्ची गावांगा।
3: मैं हर वेले कीर्तन सुनना पसंद कर दिया।
1: वाहेगुरु जी दा शुकर है जिसने बास्केटबॉल दी खेड बनाई है। मैनू बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है।
2: शुकर है मेरे कोल एवेजे बूट हन, मैं किन्नी उच्ची छाल मार सकदा हां।
3: मैं शुक्र कर दिया कि मेरे कोल तुहाडे वर्गे वीर हन।
1: ओ वेको, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पिछे पंच प्यारे खड़े हन, आओ ध्यान नाल हुक्म सुनिए।
2: मैनू उना दिया वड़िया किरपाना बहुत चंगिया लग दिया हन।
3: एक दिन मैं भी पंच प्यारियां विच शामिल होवांगी।
1: इस शब्द विच एह सिख्या मिलदी है कि सानू वाहे गुरु नू सदा याद रखना चाहिदा है।
2: चलो सारे इकट्ठे शब्द गाइए।
3: मैनू तबला बजाना बहुत पसंद है।